हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जो हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।

0: सही समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए।

0: ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कोलंबिया के बुकाराम आंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। पहले आज का चिंतन। गौतम बुद्ध का ये कथन है कि कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, क्रोध न करें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही दुखों से मुक्त हो सकता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 248। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी आप सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर कार्यक्रम होगा त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का 4th। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल और दिन में 1 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का। दिन में 2 कार्यक्रम त्रिवेणी 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सेहत नामा कार्यक्रम सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का 1। शाम 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

शाम 7 बजे का समय है। जयमाला कार्यक्रम का 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल। रात 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम और रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए का। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता प्राण पर। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत। 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम। रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 248।

आराध्य से मनचाहा वरदान प्राप्त कर मुनि सुतीक्ष्ण की साध पूरी हुई। प्रभु की इच्छा के अनुसार तब वो उन्हें अपने गुरु अगस्त्य मुनि के आश्रम ले चले। श्री राम लक्ष्मण सीता का आगमन सुन अगस्त्य मुनि उनके दर्शनों को दौड़े। नाना प्रकार से श्री राम की पूजा वंदना करने हेतु जब उन्हें आसन पर बिठाया तो मुनियों का समूह प्रभु दर्शन के लिए एकत्र हो गया। पूरी ऋषि मंडली में श्री राम इस मुद्रा में बैठे हैं कि प्रत्येक उपस्थित जन को वो अपनी ही ओर देखते दिखाई देते हैं। श्री राम ने अगस्त्य मुनि को वहां अपने आगमन का उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मुझे ऋषि मुनि द्रोही राक्षसों के विनाश का उपाय बताएं। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से दंडक वन में पंचवटी जाकर गौतम मुनि के कठोर शाप का दमन करने की प्रार्थना की।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 248। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आज से हम आरंभ कर रहे हैं संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर। इस श्रृंखला के अंतर्गत आप सुनेंगे सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों का परिचय। तो आइए पहली कड़ी सुनते हैं, राग है पूरिया धनाश्री।
2: संगीत सरिता सुनने वाले श्रोताओं को मेरा बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हिंदुस्तानी रागों के गाने के समय के अनुसार देखा जाए तो हम तीन वर्ग बना सकते हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत हो, दूसरा वर्ग जिसमें शुद्ध ऋखभ और शुद्ध धैवत हो, और तीसरा जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। आज मैं आपको संधि प्रकाश रागों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संधि प्रकाश ये समय दिन में दो बार आता है। रात समाप्त होने के बाद जब दिन शुरू होता है उस समय, और जब दिन समाप्त होकर रात शुरू होती है तब। तो ये जो दोनों समय है इनको संधि प्रकाश कहते हैं, और इन समयों पर जो भी राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहा जाता है। हिंदुस्तानी रागों का हम तीन वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं, उनके गायन के समय अनुसार या उनमें जो स्वर आते हैं उनको उनके अनुसार। ये तीन वर्ग हैं। पहला है जिसमें कोमल ऋषभ और कोमल धैवत है, दूसरा है जिसमें शुद्ध ऋषभ और शुद्ध धैवत है, तीसरा है जिसमें कोमल गंधार और कोमल निषाद। इसमें जो पहला वर्ग है जिसमें कोमल ऋखभ और कोमल धैवत, ये राग सारे संधि प्रकाश रागों में आते हैं, और इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें गंधार शुद्ध ही होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये संधि प्रकाश का समय दो बार आता है, एक जब रात खत्म होके दिन शुरू होता है और दिन खत्म होके रात जब आती है। और मैं आपको जब दिन खत्म होके रात शुरू होती है उस वक्त जो संधि प्रकाश राग गाए जाएंगे उनके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। इन रागों में पूर्वी, पूरिया धनाश्री, मारवा और श्री ये प्रमुख राग हैं, और इनमें जैसा मैंने कहा कि ऋखभ और धैवत कोमल होता है और मध्यम तीव्र होता है। आज मैं आपको इन रागों में से पूरिया धनाश्री उसके बारे में कुछ बताऊंगी। इसमें ऋखभ और धैवत कोमल, मध्यम तीव्र है, अन्य सारे स्वर जो हैं शुद्ध हैं, इसमें वर्जित स्वर कोई भी नहीं है। इसकी जाति संपूर्ण है क्योंकि इसके आरोह और अवरोह में सातों स्वरों का उपयोग होता है। इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है षड्ज। गाने का समय जैसा मैंने बताया तो उसका असर बहुत अच्छा हो सकता है। इसका आरोह अवरोह मैं आपको अभी थोड़ा सा गा के सुनाती हूँ।

मैं पुरिया धनाश्री का आपको थोड़ा सा चलन बता दूं। इसका कारण ये है कि ये संधि प्रकाश रागों में पुरिया धनाश्री, श्री या पूर्वी, इनके स्वर काफी मिलते जुलते हैं। श्री और पुरिया धनाश्री के तो स्वर एक ही हैं, लेकिन उनका आना जाना, स्वरों का आना जाना जो है वो अलग करने की वजह से रागों को अलग आइडेंटिटी मिलती है। हमारा हिंदुस्तानी संगीत इस तरह से बनाया है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि वही सब तक है, लेकिन रागों का चलन ऐसा बुजुर्गों ने रखा है कि अलग अलग शक्ल बना देता है राग अपनी। तो पुरिया धनाश्री के स्वर और श्री के स्वर एक होते हुए भी देखिए पुरिया धनाश्री का चलन कैसा है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पूरिया धनाश्री में एक रचना उस्ताद अमीर खां की आवाज में। इसे हमने लिया है फिल्म बैजू बावरा से।

0: प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत ये थी सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा की पहली कड़ी। राग था पूरिया धनाश्री। तबला संगति ओमकार गुलवाड़ी की थी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सुधीर नायक।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले अनारकली फिल्म का गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: देना साथ मेरा ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए समुंदर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मशाल फिल्म का गाना सुनिए, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, संगीत है एसडी पर।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं दर्द फिल्म का गाना उमा देवी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल, संगीत है नौशाद अली का।

आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना साधना फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत है एन दत्ता का।

साधना फिल्म का ये गाना आपने सुना, गीता दत्त की आवाज में, सहे लुधियानवी के बोल संगीत एन दत्ता का। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। जंजीर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, बोल गुलशन बावरा के हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला जो गीत है हसीना मान जाएगी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल हैं अख्तर रोमानी के।

लीजिए आप सुनिए बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अब आपको सुनवाते हैं बावरे नैन फिल्म का गाना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में केदार शर्मा के बोल संगीत है रोशन का।

नयन फिल्म का ये गीत आपने सुना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में, केदार शर्मा के बोल और संगीत रोशन का। इस गीत के साथ ही आज का हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती नागपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़

0: लगाएं इस बारिश, आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
2: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर

0: स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6-लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6-लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना

0: करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर, अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी।
3: नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में बातें दुनिया की। कहने को तो मात्र 3 अक्षरों का शब्द है दुनिया। छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है।

और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने में लगा देता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस रंगमंच पर केवल एक मुसाफिर है। अपने बड़ों से हमने ये सुना भी है ना कि दुनिया एक सराय है जहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।

दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

0: है चोरा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: आज की दुनिया बिखरी सी है, सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है। यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: क्या हुआ।
1: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गोल्ड काम आया, बेचा नहीं बस यूज किया। थैंक यू लाइन लेंडर।
1: लाइन लेंडर एक RBI मान्यता प्राप्त NBFC है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं। फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प। गोल्ड लोन मतलब लाइन लेंडर। For contact, call 709-03-07-307. Visit us, Lakatganj, Nagpur.
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।
4: श्रोताओं, आज सुबह 10 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और आज का विषय है कर्क रोग, कैंसर। इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं, 2560101 और 2529266। तो सुनना ना भूलिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, आज सुबह ठीक 10 बजे।

0: नागपुर महानगरपालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट। 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट। वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं। घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगरपालिका की वेबसाइट पर विजिट करें। जनहित में जारी।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का गाना आवाज है अलका याग्निक की, समीर का लिखा हुआ गाना है।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में कभी अलविदा ना कहना इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मंजू द्विवेदी के साथ।

श्रोते हो एक निवेदन सुनिए। आज सोमवार दिनांक 13 जुलाई को सुबह 10 बजे आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, और आज का विषय है कर्क रोग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर इस प्रकार है 2560101 और 2529266। तो सुना ना भूलिएगा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आज सुबह ठीक 10 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। हा हा हा, वाह वाह।

0: वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त यूनुस खान।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर उन्होंने बनाई फिल्म।

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए समाधि।

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब का बात बोलू साहब।

आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो

हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।

0: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर। एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
1: सिकंदर का मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
2: मंगलम भगवान मंगलम
1: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
2: वस्त्र कंधे पर रखने के लिए मान।
3: सिकंदर सिकंदर क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किससे हुई? बहन किससे हुई?
4: नहीं बताती हूँ।
3: नहीं,
4: दिलावर मुझे उठाकर ले गया था। सिकंदर मुझे बचाकर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती।
3: बस बस करो मेहन साहब।
5: मेहन साहब
3: क्या काम नहीं तेरी मेहन साहब है जिससे तू?
5: नहीं
4: मुझे कुछ सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
3: नहीं
4: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
3: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या
0: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
6: तुम?
7: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा? जानती हो लावारिस क्या होता है?
8: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
0: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा।

और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है,

लेकिन उनका सिनेमा है और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश।

0: गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोते हो प्रसारित करीत आहोत कॅनकेअर फाउंडेशन अँड सुशील मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर. हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम काही क्षणातच. श्रोते हो नमस्कार. कॅनकेअर फाउंडेशन अँड सुशील मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर. हॅलो डॉक्टर, या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. श्रोते हो, आजचा विषय आहे कर्करोग आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी ते उपस्थित आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आणि आपल्याला काही प्रश्न आहेत, काही शंका आहेत तर जरूर विचारा. त्यासाठी फोन नंबर्स असे आहेत 25 29 266 म्हणजेच 2529266 आणि 25 60 101 अर्थात 2560101. नागपूर बाहेरून फोन करणाऱ्यांनी एसटीडी कोड लावायचा आहे 07 12 07 12. श्रोताओ नमस्कार. कॅनकेअर फाउंडेशन अँड सुशील मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर. हॅलो डॉक्टर, इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. श्रोताओं, आज हमारा विषय है कर्करोग और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित है तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए. फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101. नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं. जी हाँ, 07 12 07 12. डॉक्टर सुशील मानधनिया कार्यक्रम में इस आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार. मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, सुशील मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, वो मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल.
0: जी जी जी.
1: और आज का जो विषय हम सोच रहे हैं कि कैंसर फियर मिथ्स एंड फैक्ट्स.
0: जी जी जी. मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल के आप आए हैं और सभी को पता है सुशील मानधनिया हमें बात करें, हमसे हाँ बात करें. जी जी. डॉक्टर, आज हम कैंसर इस विषय पर बात करें, इसके बारे में बहुत से मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स, तो गलत फहमियाँ भी हैं और तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो कैंसर जब

0: कीमोथेरेपी की जाती है तो कीमोथेरेपी में भी बहुत गलतफहमियां रहती हैं या बहुत मिथ्स हैं कि क्या ये सही है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: बहुत अच्छा, क्योंकि जनरली ये जो टॉपिक हमने लिया है, लास्ट वीक वी हैड 4-5 ऐसे मरीज आए थे जो ये खास करके ऐसे भ्रमित चीज़ों के कारण काफ़ी डिले हुए थे. किसी में ट्रीटमेंट का डर था, किसी में ये था कि मुझे कैंसर है ही नहीं, किसी में ये था कि भाई मेरे घर में किसी को बीमारी थी नहीं, इसलिए मैंने टेंशन ही नहीं लिया चीज़ का, मुझे लग रहा था कि मुझे तो है ही नहीं ये बीमारी. कोई कुछ किसी प्रकार की अलग तरह की ट्रीटमेंट चल रही थी जिसकी जिसके कारण वो बहुत ही आश्वस्त था कि भाई ये तो बीमारी है ही नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी कुछ तरह का अलग तरीके से एक ट्रीटमेंट चल रही थी. तो मैंने सोचा कि इसका मतलब है कि हम पिछले 7 साल हो गए मुझे, इतना हम अवेयरनेस करने के बावजूद भी हम शायद लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या हमारी अवेयरनेस हमारी मुझे नॉट मेरी हमारी सोसाइटी की, हमारी लोगों की, डॉक्टर्स की, मीडिया की, तो उसके कारण काफ़ी ट्रीटमेंट के बारे में मिथ्स है, मुझे गैर समझ आणि खूब भीति है, दैट इज़ फियर.
0: अच्छा,
1: बट ये दोनों को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ बाय द फैक्ट्स. सच में ये क्या है, तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये पब्लिक को उनके भाषा में बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनके दिमाग में एक बहुत ज़बरदस्त डर तो है ही कैंसर के बारे में, और वो डर एक बहुत सारे फियर्स के जो है, ये बहुत सारे भ्रांतियाँ मिथ्स के कारण है. कैसा होता है ना कि जैसे अब कीमोथेरेपी का आपने जैसे उदाहरण लिया
0: जी, जी.
1: कि हर पेशेंट को ऐसा लगता है ना कि कीमोथेरेपी मुझे बहुत ज़रूरी है, पहला कभी कभी ऐसा लगता है. तो कई बार कैसा होता है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या ओरल कैंसर, बहुत अच्छा एग्जांपल ओरल कैंसर का होता है, तो वो ऑपरेशन कई बार पेशेंट बाकी सब मिथ को छोड़ दे, तो वो इसलिए भी नहीं करते कि मुझे बाद में आपने बोला था रेडिएशन भी लगेगा, कीमो भी लगेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेज 1 की बीमारी भी वो ऑपरेट नहीं करते.
0: जी, जी.
1: तो उससे क्या होता है कि इनको तो कीमो और रेडिएशन की जरूरत होने वाली नहीं है ना, पर वो जो मिथ है उनके दिमाग में या डाल दिया गया मिथ लोगों ने, या क्या होता है आज से 10 साल पहले ना दुनिया बहुत थोड़ी अलग थी, आज से 10 साल बाद अभी दुनिया बहुत ही डिफरेंट हो गई है. तो देर आर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स, गूगल एक्सपर्ट्स है, व्हाट्सएप एक्सपर्ट्स है, ये जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स है उसके कारण बहुत आलतू फालतू मसाला मिलते रहता है इनको.
0: डॉक्टर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक कॉल लेते हैं. हेलो.
2: हेलो मैडम, नमस्कार. आणि सर, डॉक्टर मांजे सरांना पण नमस्कार.
1: नमस्कार
2: सर, मला एक 3 प्रश्न होते माझे की कॅन्सरच्या बाबतीत जे आपले बॉडीचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, विशेषतः ऍब्डॉमन मध्ये त्याच्यामध्ये बरेच पार्ट्स आहेत, तर याच्यामध्ये जर कॅन्सर ला सुरुवात झाली प्रायमरी स्टेज मध्ये तर ताप वगैरे येतो का सर? त्याच्यामध्ये सुरुवातीचे काही तापा वगैरे येतो का कॅन्सर मध्ये? मी असं ऐकलंय की कॅन्सर मध्ये ताप वगैरे काही येत नाही. आणि असा कोणता दुसरा प्रश्न असा आहे की कोणत्या बॉडीच्या मध्ये कॅन्सर निर्माण होत असेल तर त्याची खूप उशिरा आपल्याला लक्षण लक्षात येतात? आणि मुख्य म्हणजे ऍब्डोमन मध्ये जे पोटामध्ये जे कॅन्सर असतात त्याची लक्षणं काय असतात आणि त्याच्यामध्ये ताप येतो का सर?
1: हे
0: आपलं नाव काय?
2: माझं नाव शैलेश.
0: बर
1: शैलेशजी, खूप खूप आभारी आहे मी तुमचं, कारण की हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. और ये अमोंग दी आमचे मिथ्स म्हणजे जे गैरसमजेमध्ये पण येतो की जनरली जैसा पहला प्रश्न था ना की कॅन्सर में बुखार आता है क्या, तो कैसा होता है की देर आर सर्टन कॅन्सर जहां पे ना अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड फीवर आते रहता है.
0: अच्छा.
1: और वो एक्सप्लेन ही नहीं होता, देर इज नो फोकस. हम पूरा चेक कर लेते हैं जनरली, जो फिजिशियन चेक कर लेते हैं तो दे डोंट फाइंड एनी फोकस. तो अगर कैसे जैसे कोई अब्डोमिन में कुछ नहीं दिख रहा है, लंग्स में कुछ नहीं दिख रहा है, जीआई सिस्टम में कुछ नहीं दिख रहा है, स्किन में रैश नहीं है, कभी कभी पेरिनल एब्सेस होते हैं ऐसे लोगों को, स्किन के रैशेस होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी रूल आउट हो जाते, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए जैसे बुखार है, तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैलिग्नेंसी. तो मोस्ट कॉमन जो मैलिग्नेंसीज हम फीवर के साथ देखते हैं, दैट इज लिम्फोमास. उसमें एक तरह का फीवर रहता ही है, उसमें लो ग्रेड फीवर रहता है इसमें, और कुछ कुछ सॉलिड ट्यूमर्स में भी हमको बुखार के रूप में उसकी जानकारी या उसके सिम्टम्स मिल सकते हैं. सिम्टम म्हणजे लक्षण
0: म्हणतात.
1: आणि कोणते कॅन्सर्स उशिरा डायग्नोस होतात म्हणजे लेट डायग्नोसिस, तो मोस्ट कॉमन जो कॅन्सर है जो सबसे लेट डायग्नोसिस हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है ना, दैट इज लंग कैंसर. और वी हैव ए वेरी गुड डेटा फॉर दिस. हमारे पास एक जो हमारा हॉस्पिटल का डेटा है लंग कैंसर में, हमने देखा, आई विल टॉक अबाउट द परसेंटेज, मैं परसेंटेज में बात करूंगा, नंबर्स में नहीं. तो आउट ऑफ 100% जो लंग कैंसर के मरीज हम देखते हैं ओपीडी में, या जो हमारे को रेफर होके आते हैं या तो डायरेक्ट आ जाते, कई बार बहुत कम बार आते डायरेक्ट, तो आउट ऑफ दिस 100% नियरली 95% प्लस आर लेट स्टेज. आइदर दे आर इनक्यूरेबल और दे आर मेटास्टेटिक, मुझे बहुत स्प्रेड हुए हुए. तो ये बहुत ही लेट डायग्नोस होते हैं बिकॉज इनके सिम्टम्स भी बहुत लेट आते हैं. और देखेंगे ओवेरियन मैलिग्नेंसीज, दे कम वेरी लेट. मुझे जनरली

0: स्टेज थ्री या स्टेज थ्री सी के आसपास ही मिलती है. जी आई मेलिग्नेसीज जो है ना, और जैसे गैस्ट्रिक कैंसर्स वगैरह कई बार पता ही नहीं चलते हैं बिकॉज इनके सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं.
1: अच्छा.
0: और वो कई बार ना गैसेस, डिस्टेंशन, पोट फुगला सारा का, तो एसिडिटीज आए, मतलब स्ट्रेस होता मनोन होते, कफ है, तो मैं थोड़ा सा ना ये गर्मी ठंडी में मुझे कफ होता ही है सर, कभी कभी ठसे में से खून आता ही है, मैं तो बाहर ट्रैवल करता हूँ तो पोल्यूशन के कारण हो रहा है. तो ये सब चीज़ें के कारण ना कई बार देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन दी सिम्टम्स. तो ये सिम्टम्स को कई बार पेशेंट्स या जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं कई बार उसको जनरल प्रैक्टिशनर्स उसको एक नॉर्मल नॉन मेलिग्नेंट सिम्टम्स करके भी ले सकते हैं. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर चीज को हम कैंसर नहीं देख पाते और प्राइवेट प्रैक्टिस जो जनरल प्रैक्टिस
1: में बहुत सालों से खांसी रहती है या,
0: तो दैट इज द रीजन. पर इसमें ना कैसे एक रेड फ्लैग्स होते हैं, तो रेड फ्लैग्स समझना बहुत जरूरी होता है. और जहाँ हम जो देखते हैं ना, जैसे जो जनरल प्रैक्टिशनिंग डॉक्टर्स होते हैं इन दे आर फ्लडेड विद द पेशेंट्स. जैसे अभी अभी बारिश चालू हो गई, एक एक डॉक्टर 100-125 पेशेंट देख रहे हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर द डॉक्टर हिमसेल्फ कि वो उसको 5 मिनट में हिस्ट्री ले, 5 मिनट बैठ के हिस्ट्री ले ले उसकी, हाँ काय तो रहता है, चल हो गया, तो क्योंकि संभव ही नहीं हो पाता है. तो दैट इज द रीजन कि कई बार थोड़ी थोड़ी ये जो इनिशियल सिम्टम्स है मिस होने की संभावना रह सकती है इसमें, ठीक है. बट देर आर स्मार्ट पीपल जो फट से पकड़ भी लेते हैं इस चीज़ों को, तो दैट इज द रीजन कि लेट डायग्नोसिस. और तीसरा रहता है कि भाई पेट के बीमारियों में क्या सिम्टम्स, मुझे पेट के कैंसर में, पेट मुझे पेंडोरा बॉक्स बोलते हैं उसको, जादू का पिटारा है, उसमें सब आ गया, स्टमक है, कोलोन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, फिर इसके बाद में किडनीस है, लीवर है, पेनक्रियास है, कोलेंजिक जो बाइल डक्ट्स वगैरह, लिम्फ नोड्स है. तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डब्बा है पूरा. तो इसके सिम्टम्स
1: कॉल लेते हैं. हेलो
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब.
0: नमस्कार बाग साहब, बोला
2: सर. मला विचारायचं जसं आता खूपशा ऑर्गन्सवर कॅन्सरची पहिली स्टेज दुसरी स्टेज येते, खूप लोक म्हणजे सर्जरीला भीतात, ते म्हणतात की सर्जरी केली तर मला म्हणजे जास्त त्रास होईल, मला बाकी ट्रीटमेंटनी जर ठीक झालं चांगलं होईल. तर सर्जरीमुळे पूर्ण म्हणजे जसं लंग कॅन्सर आहे किंवा ओरल कॅन्सर आहे, ते सर्जरीनी पूर्ण ते कॅन्सर निमूळ होऊ शकते का, व सर्जरी झाल्यावर बाकी ट्रीटमेंट आवश्यक आहे का?
0: व्हेरी गुड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका उत्तर ना थोड़ा अलग तरीके से देता हूँ. पेशेंट कई बार हमको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है, जैसे आपने दूसरे नंबर पे पूछा था ओरल कैंसर, तीसरा पूछा था आपने लंग कैंसर
1: जी.
0: तो मुझे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप बिना ऑपरेशन के ये संभव नहीं है क्या? तो मेरा उत्तर दूसरा रहता है कि भाई ये आपके नसीब अच्छे कि आपका सर्जरी लायक संभावना है, क्योंकि सर्जरी इज द ओनली क्योर इन दिस डिसीज, ठीक है. अगर हम क्योर चाहते तो हम सर्जरी दो जगह नहीं करते ये बीमारी में. एक तो जब बीमारी स्टेज फोर है या मेटास्टेटिक है, जैसे समझो ओरल कैंसर है, मुख का कैंसर है.
1: अच्छा.
0: आभा का सुने होंगे आपने ना, आरआर पाटिल, ही केम विद स्टेज फोर कैंसर, पूरा छाती में गया था, तो ही डाइड विद इन 1 month. पर सेम इज विद शरद पवार, उनकी 5 surgery होगी, बट इट वॉज लोकल, बट ही डिड सर्जरी फॉर ऑल 5 times, 3-4 times. तो देखो आज भी ही इज डूइंग वेरी वेल. तो दैट मीन्स की सर्जरी इज क्योर, पर आपको सही समय पे सही बंदे से करना बहुत जरूरी है इसमें, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इसकी कई बार सर्जरी के बाद मैंने देखा है कि पेशेंट लॉस्ट टू फॉलोअप हो जाते हैं. तो सर्जरी के बाद में भी हिस्टोपैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल वापस ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर दोनों का देता हूं मैं.
1: अच्छा.
0: अगर ये एक ही सर्जरी है जिसमें अगर समझो सर्जरी में वाइल्ड लोकल एक्सीजन, जब बीमारी निकल गई पूरी जड़ से और लिम्फ नोड्स भी निकाल दिए गए, उसके बाद में पेशेंट टर्न अप ही होते हैं, माजी सर्जरी भी चांगला है, पर उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट नहीं लाते. कई बार रिपोर्ट 2 साल बाद भी ली हुई नहीं होती है, पर हो सकता है वो रिपोर्ट में लिम्फ नोड पॉजिटिव, जिसमें उसको एडजुवेंट मतलब और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत होनी जरूरी है, ताकि वो बीमारी दोबारा ना
1: हाँ,
0: तो वहां मिस हो जाती है. तो दैट इज द रीजन की दे कम विद पेरीफेरी में. ये जनरली अच्छे सेंटर्स में नहीं होता है, पर जनरली पेरीफेरी में होने की संभावना होती है. मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस आर रियल एग्जांपल. जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में कई बार कैसे मैंने देखा पेरीफेरी में, पेरीफेरी का मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ब्रेस्ट में गांठ होती है, निकाल के उसको ऑपरेशन हो जाता है. जब पेशेंट हमारे पास 2 साल बाद आते ना, तो फीवर, वेट लॉस, गले में बड़ी बड़ी गांठें, जांघों बगल में गांठ, हम समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज द रीजन. क्लिनिकल एग्जामिनेशन में दिखता है ब्रेस्ट पे चीरा था, फिर उसको पेशेंट को पूछती है ऑपरेशन कब हुआ था, सर 2 साल पहले था, मतलब रिपोर्ट कहाँ है, सर रिपोर्ट तो है ही नहीं, तो बोला क्यों नहीं है सर, डॉक्टर साहब ने बोला सब निकल के फेंक दिया, बोले अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है. तो ये जो होता है ये बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो है ये.
1: अच्छा.
0: और इसके कारण क्या होता है कि जो हिस्टोपैथ होना चाहिए था वो हुआ नहीं, हिस्टोपैथ हुआ होगा तो पेशेंट ने रिपोर्ट नहीं लिया, पेशेंट दोबारा नहीं गया, तो उसकी कैंसर की जो ट्रीटमेंट थी वो अधूरी थी, इसलिए बीमारी दोबारा वापस आ गई है. और ये अब जो आई है वो स्टेज 4 है, अब ये क्यूरेबल नहीं है. तो आप सोचिए कि एक ह्यूमन लाइफ इज सो प्रेशियस, और ये इस छोटी सी मुझे लगता है कि जो छोटा सा जो बोल सकते हैं कि एक भ्रमितता के कारण मिस हो जाती है चीजें, तो

0: सावधान होना बहुत जरूरी है कि अगर कुछ भी प्रकार का टिश्यू निकलता है बॉडी में, बायोप्सी भी निकल रहा है, ट्यूमर भी निकल रहा है, गार्ड भी निकल रहा है, पहला चीज तो उसको हिस्टोपैथ को भेजना जरूरी है, और दूसरी चीज उसको पूरा टिश्यू को भेजना। कई बार हमने ऐसा देखा कि एक एक एक ट्यूमर के तीन टुकड़े करते लोग, एक ये लैब में भेजते, एक वो लैब में भेजते, नहीं नहीं मैंने हे होऊन जाना, मैंने आपका कन्फर्म होऊन जाना, आता मैं सांगतो तुम्हारा प्रॉब्लम का होता
1: है। प्लीज हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: बोलिए
0: अमर जी। जी बोलिए।
2: नागपुर से सर, ये जो कैंसर में जो कीमोथेरेपी के मतलब जो पेशेंट्स होते हैं, इनको किस तरह का मतलब सर प्रिकॉशन लेना चाहिए बिफोर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट, इसके बारे में सर क्या अगर आप एडवाइस करेंगे लोग।
0: मैंने बोला अमरजीत जी और मिस्टर वाघ को एक बार सम्मानित करना चाहिए हमने आकाशवाणी स्टूडियो में, दे आर सो रेगुलर लिसनर, देयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी गुड। तो कीमोथेरेपी के पहले की जो प्रिकॉशन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी एंड पोस्ट कीमोथेरेपी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिसोड है, पर एक शॉर्ट में बता दो कि कीमोथेरेपी में आपको ये जानना जरूरी है कि कीमोथेरेपी में हम बॉडी के साथ क्या होने वाला है। अगर वो चीज़ हम समझ ले तो वी विल बी वेरी कॉशियस। जनरली कीमोथेरेपी में जब हम देते हैं तो ऑलरेडी कैंसर इसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, कीमोथेरेपी के बाद में वो कम होने की संभावना और बढ़ जाती है।
1: अच्छा,
0: सेकंड थिंग इज की सेकंड में कीमोथेरेपी के दौरान में कीमोथेरेपी की जो इन्फेक्शन रेट्स बढ़ने की संभावना रहती है। थर्ड थिंग इज की पेशेंट इज क्वाइट निग्लिजेंट अबाउट दी बॉडी माइंड एक्सरसाइज एंड डाइट। तो ये सब चार पांच चीजें अगर हम साथ में रखते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, तो जनरली हम देखते हैं कि जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है वो टॉक्सिक इफेक्ट बन जाते हैं। क्या होता है ना, लोगों को साइड इफेक्ट्स ऐसा रहता है कि साइड इफेक्ट म्हणजे हे सह परिणाम आहे ते होणार त्याला घाबरायची गरज नाही, पण साइड इफेक्ट हे टॉक्सिक इफेक्ट म्हणजे दुष्परिणामध्ये नाही गेले पाहिजे। समजा दरवाजे को आपको पैर लग गया ना तो दर्द होगा, वो दैट इज साइड इफेक्ट, पर वही दरवाजे पे आपको पैर लगने से नसें कट गई, ब्लीडिंग हो गया, स्टिचेस मारना पड़ रहा है, दिस इज टॉक्सिक इफेक्ट। एक ही चीज के दो डिफरेंट इम्पैक्ट है, तो ये है साइड इफेक्ट और सह परिणाम दुष्परिणाम। तो सह परिणाम होणार तुम्हाला कि जैसे कि हेयर लॉस है किसी में होना ही चाहिए, अगर डे 15 से 20 में नहीं हो रहा है तो हमारा, जैसे मैं एम्स में था तो बॉस यूज टू बी वेरी फ्यूरियस कि तुमने मुझे वायल दिखाओ, तुमने दिए क्या, तुमने म्यूकोसाइटिस अगर जिस किसी इसमें ट्रांसप्लांट में नहीं होता तो यूज टू ऑलवेज सी गिव शो मी द वायल्स, शो मी द दिस, शो मी द रिकॉर्ड्स कि तुमने लगाया कि नहीं लगाया, बिकॉज बिल्कुल को ये होना ही चाहिए उस समय में, और काउंट्स कम होना तो होना ही चाहिए। बट दुष्परिणाम क्या है कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई आपने दवा लगा दी, पेशेंट को काउंट्स कम हो गए, फीवर आ गया, उसको शॉक में चले गया, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, वेंटिलेटर पर चले गया, तो दिस इज टॉक्सिक इफेक्ट। तो इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर कीमोथेरेपी जो मैंने मेजर गलतियां जो पेशेंट की देखी है ना, वो ये है कि पेशेंट पहले तो खाली पेट आ जाते हैं, बताते नहीं, एक तो बेचारे बहुत दूर से दो दो तीन तीन बसेस ट्रैवल करके रात भर ट्रैवल कर ऑलरेडी बहुत थके हुए होते हैं।
1: जी जी।
0: और दूसरी चीज मैंने देखी कि जो प्री मेडिकेशंस होती है जो हम बोलते हैं उनको लेने को, जो टॉक्सिसिटीज को कम कर सकते, कई बार वो मिस कर देते। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो देखी है ना, उनमें देखी कि जैसे कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है, वो गोलीच नहीं खाते उस दिन, मला वाटलं की ते घ्यायची गरज नाही, कीमो सोबत एक गरज नसते। तो कई बार ऐसा होता की जब पेशंट बेड पे आता है तो उसका पल्स रेट है 140, बीपी देखते हैं तो 180 110, हम समझ ही नहीं पाते व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। फिर एक पूछते तो बताते डॉक्टर साहब गोळ्या सुरू होते, म्हणे मग कोणती गोळ्या, आणलेच नाही हो, ते घरीच आहे। तो ये सब चीजें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमने देखा है कि दे आर पुअर इन हाइड्रेशन। जैसे अभी बीच में समर देखो, इस साल जैसा समर तो मेरी जिंदगी में नहीं देखा कभी, जिस तरह से धूप थी, तो जिसके कारण हमने देखा कि द इम्पैक्ट इज सो बैड। आप सोचो आप अच्छे अट्टे कट्टे हो, आप धूप में जाते हो 5 मिनट तो आप ठंडे पड़ जाओगे।
1: जी जी।
0: तो ये बेचारे इतने तकलीफ में है, मरीज है, ऑलरेडी इतनी बीमारी से लस्त है, तो इनके पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका। तो हाइड्रेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: कॉल लेते हैं। हेलो हेलो,
3: नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: हाँ मैं अनिल गजगाडे बोलतो मॅडम, खामळ्यावरून।
1: हाँ बोला, विचारा प्रश्न अनिल जी।
3: खर्रा खाना आणि तंबाखू खाना आणि हे तोंडामध्ये धरून ठेवतात अर्धा अर्धा एक एक घंटा, आणि त्याच्या तोंड खुलत नाही, त्याला जेवता येत नाही, कधी छाले आले तर मग हे कॅन्सरच्या लक्षणामध्ये जाऊ शकते का?
0: बहुत अच्छा। जनरली ये जो खर्रा है ना, ये भगवान ने हमारे नागपूर को बहुत बड़ा वरदान दिया है इसको नागपुरी खर्रा बोलते हैं, पर ये अभी इसका जो इन्फेक्शन है अभी पूरे विदर्भ में है। तो अब मैं तो गढ़चोली में जाता हूँ, डीप जंगल में भी लोग दिन भर मुंह में खर्रा लेके रहते हैं। तो मैंने देखा है कि आप अगर ना थोड़ा आज से 25 साल 30 साल पहले चल जाओ, तो आपके जब दादा दादी नाना नानी जिंदा थे ना, आप देखना वो तंबाकू घोट के खाते थे बहुत, जीप अंदर रखे, 80 साल तक कुछ नहीं हुआ उनको, झाड़ के नीचे सब बैठे है तंबाकू खा रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। तो वाई इट इज की भी हम अभी 18 साल 19 साल 22 साल 25 साल 28 साल के लोगों में भी मुंह का कैंसर देख रहे हैं। सो इसका मेन कारण है दैट इज सुपारी।
1: अच्छा।
0: जो दैट इज ए केमिकली प्रोसेस्ड, कुछ तो केमिकल से प्रोसेस्ड है। कभी आपने सुना है वो कितना आप सुनते हैं कि मुंडे साहब अभी ये धाड़ पड़ी उधर, इधर धाड़ पड़ी,

0: अवैध सुपारी जब्त, अवैध क्या, सुपारी में अवैध क्या होने लगा भाई,
1: उसमें भी
0: तो
1: मिलावट और
0: दिस इज दैट।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि इट इज ए सिनर्जिस्टिक, मुझे एक और एक ग्यारह, तो मेरे को लगता है एक और एक ग्यारह नहीं, एक और एक 11,000 ही हमारे इसमें, क्योंकि इसका जो दो बहुत ही खतरनाक चीज़ देखने मिलती है, एक तो कैंसर इज अ वन पार्ट, वो तो
1: जी
0: छोड़ दो, पर ये जो कैंसर है ना, दे आर वेरी बैड, क्योंकि उसमें उसका जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है ना, पूरे मुंह में है, ऐसा नहीं कि जहां आपने रखा हुआ है, तो एक तरफ का कैंसर की सर्जरी हो भी गई तो दूसरी तरफ होते हैं इनमें बार बार।
1: अच्छा
0: और तीसरा चीज है कि कैंसर जिसको नहीं भी हुआ, जैसे 100 के 100 खा रहे हैं तो 100 को थोड़ी हुआ है कैंसर,
1: जी
0: पर जो
1: जी
0: 100 में के 100 को भी आपको, आप देखोगे कि ओरल म्यूकोसा का तो पूरा डैमेज हो चुका, व्हाइट हो जाता अंदर का पूरा म्यूकोसा,
1: जी
0: मिर्ची नहीं खा पाते, टेस्ट नहीं आता इनको, फिर इसके बाद मुंह नहीं खुलता इनका प्रॉपरली, और सलाइवेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, निगलने में काफ़ी तकलीफ होती है इनमें, और लेटर स्टेजेस में दिस इज अ प्री कैंसर, इसको डाउट इन इसमें प्री
1: जी
0: कैंसर
1: जी
0: इसलिए भी है कि तुम्हारे जो जो तुमने आग थी ना वो ऑलरेडी रखी है अपने पास में, तो दिस
1: अच्छा,
0: इट इज बर्निंग
1: किसी
0: स्टिल।
1: को वो
0: हाँ
1: जल्दी इफेक्ट हो जाएगा,
0: हाँ
1: किसी को
0: और वो
1: धीरे धीरे
0: ऑलरेडी
1: होगा।
0: ऑलरेडी वो उसके बाद में भी वो खाते रहते हैं, और
1: जी
0: कई
1: जी
0: मरीज ऐसे बोलते हैं ना कि आपने खर्रा खाते थे ना, तो हो छोड़ ला साहब डॉक्टर साहब, कभी छोड़ ला 2 महीने आदि, पक्का समझ लेना 2 महीने पहले उसको बहुत जबरदस्त सिम्टम्स मिल गए, कोई पेशेंट छोड़ता ही नहीं जब तक कि उसको बहुत बड़ी बत्ती नहीं पड़ती
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये जो देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये 2-3 महीने से उसको अल्सर अंदर था, वो उसको समझ जाता है कि ये मेरा बीमारी है,
1: जी
0: देन इज द रीजन दे स्टॉप। तो ये जो खर्रा जो बोल रहे ना, इससे वेरी लिथल, अगर
1: जी
0: तो अगर आप 100 में से 100 मार्क दोगे तो मैं खर्रे को दूंगा मैलिग्नेंसी के लिए, और
1: जी
0: तम्बाकू को मैं 30 के
1: जी
0: रखूंगा।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कैन केयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है कर्क रोग, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हैं, समस्याएं हैं तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ, 0712-07-12। डॉक्टर मानधनिया, एक कॉल लेते हैं।
0: प्लीज।
1: हेलो।
2: हेलो। हाँ मैडम, मुझे ना सर से एक क्वेश्चन पूछना है।
1: जी, आपका नाम
2: हाँ,
1: बताइए।
2: मेरा अर्चना फाटे। हाँ
1: जी,
2: देशमुख। हाँ सर। हेलो।
0: हाँ प्लीज बोलिए।
2: हमारी शिवजी की भक्त है वो, हम लोग मंदिर में जाते हैं, इसे वो उनका आयुर्वेद में चालू था डिस्कशन, मैंने बोला नहीं, यदि ये के बॉडी के अंदर है हिस्टेक्टोमी।
0: हेलो
1: हेलो हेलो, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो रहा है। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि आजकल जो ओरल कैंसर्स होते हैं उसके बारे में, तो आजकल बहुत जल्दी ये हो रहे हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आजकल जो मिलावट जो बढ़ गई है, और इसकी वजह से जो कॉस्मेटिक्स हैं, तो कॉस्मेटिक्स की वजह से और
0: कॉस्मेटिक्स
1: या केमिकल्स जो है, तो इसके वजह से भी कैंसर्स बढ़ रहे हैं ऐसा कहा जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: सी डेफिनेटली केमिकल का बहुत बड़ा रोल है,
1: जी
0: और ये केमिकल ना हमारे डे टू डे में है भी।
1: जी
0: मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे अब सब्जी खाते हो, ठीक
1: हाँ
0: है, तो इसमें पेस्टिसाइड कितने लेवल का है, ये तो ट्रिमेंडस। मुझे अगर आप
1: जी
0: आपको एक सब्जी सब्जी पे अगर समझो 1x बोलना चाहिए, 1x, तो नियरली 20x 30x पेस्टिसाइड है उसके ऊपर पे। तो ये पेस्टिसाइड किस चीज़ के लिए, इट इज़ टू कंट्रोल द पेस्ट, उनको मार जाते हैं, है ना,
1: जी
0: ठीक
1: जी
0: है। तो पर इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन में आप खाओगे तो क्या होगा उसको, इट इज़ गोइंग टू बी अब्जॉर्ब, वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो आपके किडनी पे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके लीवर पे इफेक्ट कर रहे हैं, आपके DNA को डैमेज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे को बीमारी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, बीमारी डेफिनेटली बढ़ रही है इससे। आप देखोगे आज कुछ 15,000 लीटर के, 3,000 लीटर के, 40,000 लीटर पर दूध को
1: जी
0: अच्छी कंपनी के दूध को फेंकना पड़ा। कल सातारा में आप रोड पर देखेंगे 10,000 लीटर ट्रैक्टर्स के ट्रैक्टर दूध फेंके गए,
1: हाँ
0: क्यों फेंके गए, बिकॉज ऑफ द फियर कि भैया पकड़ में आएंगे। तो इसका
1: हाँ
0: मतलब अडल्ट्रेशन कितना स्ट्रांग है,
1: जी
0: आपको कुछ जो भी खा रहे हैं जो भी मिल रहा है सब मिलावट है, बट दैट अडल्ट्रेशन इज कॉजिंग ट्रिपेंडस। आज के पेपर में आप देखेंगे एक डॉक्टर जवंदिया करके नागपुर में और नेफ्रोलॉजिस्ट, उन्होंने एक क्रीम पकड़ी थी कि गोरे क्रीम समथिंग,
1: जी
0: तो उसमें मर्क्यूरी का लेवल कितना था, 1200 times,
1: हाँ
0: तो उसके कारण किडनी फेलियर थे। यस
1: एक कॉल है। हेलो
3: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
3: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग
3: सर। गुड मॉर्निंग।
0: नमस्कार मैडम, बोला।
3: हाँ सर, मला एक प्रश्न विचारायचा होता। माझे मामा जे आहेत किडनी फेल डायलिसिसवर आहे दोन्ही, आणि त्यांना स्पाईन मध्ये बॅक्टेरिया झाला होता लंबर स्पाईन मध्ये, तर ते काय कॅन्सर मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो?
0: नाही नाही, तसं काहीच नाही,
3: त्याचं काही असं कनेक्शन आहे का?
0: नाही नाही, बिलकुल नाही।
3: अच्छा ठीक है सर, थैंक यू।
0: तो ये जो बोल रहा हूँ, आपने बोला था ना फूड, फूड हैज गॉट डेफिनेटली रोल। आप देखोगे ना कि आज से 30 साल में और अभी में ऐसा क्या हुआ है कि कैंसर बढ़ रहा है, तो वन इज अवर डाइट, सेकंड इज अवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट टू बी ब्लेम, एनवायरमेंट सब आगे बढ़ा, आपका पानी भी आ गया, आपका फूड भी आ गया।

0: आपका बाहर का पोल्यूशन लेवल आ गया, तो ये सब चीज़ें हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे शरीर में इसका इम्पैक्ट कर रही है। समझो आज ये 20 साल पहले से इसने इसका प्रमाण बढ़ा था, तो ये 20 साल इज इनफ फॉर टू द रिजल्ट टू कम इन टू द मार्केट। जैसे देखे तो अभी आ रहे हैं ना मरीज, आप देखो कितने बढ़ रहे हैं। पहले आपने कभी सुना था 15 साल पहले कि इतने मरीज थे, आज तो हर घर में कैंसर, किसी किसी घर में तो मैं एक एक घर में 3-3 मरीजों को ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी इससे दूर नहीं हूँ, मुझे मी ऐसे डॉक्टर हाउ कैन आई बी अवेयर ना। हम सब्जियाँ खा रहे, खाना खा रहे, बाहर का फूड खा रहे, पनीर देखो तो मिलावट, फूड देखो तो मिलावट, खोए अब करे क्या आदमी
1: इन सब, यही सवाल है कि अब
0: वेरी डिफिकल्ट। 140 करोड़ में ये बहुत डिफिकल्ट है। तो मुझे लगता है कि एक तो समझदारी हमको करनी, हम क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट पे डालते रहते हर चीज को, अरे यार तू बाहर सड़क पे 80 रुपए में पनीर टिक्का खाएगा, तो खुद का तो दिमाग लगा कि जो पनीर 500 रुपए किलो में आइडियली मिलना चाहिए, 80 रुपए में कैसे टिक्के मिल रहे तुमको। तो दैट कलर उस पे हाथ में उसका जो कलर लगता है ना, दूसरे दिन तक हाथ में धूल के नहीं निकलता है, तो दैट इज नॉट एक एडिबल कलर। वो एडिबल कलर है नहीं, वो इंडस्ट्रियल कलर है। दिस आर वेरी कार्सिनोजेनिक, भयानक कार्सिनोजेनिक है। दे आर इनफ टू हैव दिस इम्पैक्ट। तो ये चीज हमको समझना पड़ेगा। वी हैव टू ईट स्मार्ट, we have to be more cautious about our health।
1: बहुत सी खाने की चीजें आजकल जो प्लास्टिक में मिल रही हैं, ये भी एक कारण हो सकता है।
0: आप एक स्टडी देखना था, अभी आई थी बीच में, they had seen the samples of those eating in the plastic। अपने इंडिया में खासियत होती है, आप देखोगे हमारे हॉस्पिटल में तो बहुत क्लासिकल क्लास है, पेशेंट के लोग ने ऐसे थैली में एक कुछ तो भी लाते रहते, कहा है रे बड़ा सर चाह ली, मुझे मर जाएंगे वो चाय नहीं पियेंगे तो, पर वो पीना है उनको प्लास्टिक में। सच बता रहा मैं आपको, मुझे व्हाट इज दिस स्टूपिडिटी। अरे आप इतने ही तो घर से एक थर्मस ले आओ ना, उसमें लेके आओ, वो नहीं करेंगे आपको। एक गिलास में मैं आपको एसिड दूंगा पीने को, आप बोलूंगा एसिड पी ले तू, मैं तेरे को 1,00,000 रुपए दूंगा, नहीं पीगा कोई भी। क्यों? क्योंकि उसका इमीडिएट आपकी डेथ है। दिस इज नॉट विद द प्लास्टिक, दिस इज नॉट विद द टोबैको, दिस इज नॉट विद द खर्रा। आज सालों साल खाते रहते लोग, काइज नहीं होता है, पर जब होता ना तो पूरे 10 साल निकल जाते आपके बाहर। तो दिस माइक्रो प्लास्टिक का एक बहुत अच्छी स्टडी है, तो उसमें देखा था कि दे हैड लैक्स एंड लैक्स ऑफ माइक्रो प्लास्टिक इन देयर बॉडी। तो जरूर थोड़ी कि कैंसर ही करें, कैंसर तो बहुत बात की चीज़ है मैडम, इसके साथ साथ में जो आपके मेंटल स्टेटस पे कितना इम्पैक्ट होता है, सिनर्जी, लिथार्जी, पेशेंट इजी फर्टिबिलिटी होती है इनमें, कॉफ बढ़ जाता है उनको, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ये इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं लोगों में।
1: और धीरे धीरे
0: लोग बोलते हैं ना, अभी देखना आप एक श्रोताओं को समझ में आ रहा होगा कि हर घर में एक चीज एक तो कॉमन होंगे, सर माझे केसे खूब जाता है। हर कोई बोलेगा आपको ये माझे केसे खूब जाता है। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, 3 साल पहले तो किसी के नहीं केसे जा रहे थे, आज तक कम जाते। कहीं ना कहीं तो हमको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको समझनी पड़ेंगी, चीप चीज़ों से दूर रहे, कॉस्मेटिक, हमारे माँ बाप ने कभी यार कौन सा क्रीम लगाया था, वो तो मलाई लगाते थे। अभी ये क्रीम जो मर्क्यूरी है तो उसमें किडनी फेलियर्स कितने एकेडमी में केस प्रेजेंट हुए थे, उसमें 2 किडनी फेलियर्स के पेशेंट थे और दोनों देवर अप्लाइंग दैट क्रीम। तो हमको समझदार होना पड़ेगा कि भी कॉस्मेटिक से दूर रहो,
1: कौन सी चीज हमें यूज करनी चाहिए और नहीं,
0: थोड़ा सोच कर पढ़ो तो सर उस पर क्या लिखा
1: जी। डॉक्टर एक कॉल लेते हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार।
2: हाँ मी सहकार नगर मधून साधू बोलतोय।
0: प्लीज।
2: हाँ माझं म्हणणं हे होतं सर की आपण जेव्हा कॅन्सरची सेल मारायसाठी किमोथेरपी करतो आणि किमोथेरपी करत असताना ज्या चांगल्या सेल सुद्धा त्याच्यात डॅमेज होतात आणि त्या जेव्हा डॅमेज होतात त्याच्यामुळे बॉडीवरती एवढा परिणाम होतो की त्याचे केस जाणं किंवा विकनेस येणं आणि इतर गोळ्या पण चालू राहतात, तर त्याच्यात फ्रुट्स वगैरे जे आहे ज्याच्यामध्ये इम्युनिटी पॉवर वाढते
0: काय,
1: आणि फ्रुट्सचा
2: जो अर्क असतो किंवा फ्रुट्स दिल्यानंतर इम्युनिटी पॉवर वाढते, तर अशा पद्धतीने त्याची पॉवर वाढवून मग त्या ज्या सेल आहे ज्या डॅमेज होऊन राहिल्या त्यांना वाचवता येईल।
0: ठीक आहे, इम्युनिटी वाढवणं हा इतका अच्छा सेलिंग शब्द आहे कि आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर लिख दो आप, ये इम्युनिटी बढ़ाता है, कैंसर के साइड इफेक्ट कम करता है, पेशेंट गो ब्लाइंडली विद देम। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पर पूरा ध्यान दो, जैसे फ्रूट्स है, जूसेस है, यस दे हैव गॉट एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, गो फॉर दैट। पर आप ये बोलूँगा कि ये टिन जूस है, कैंड जूसेस है, ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं बाजार में जिसमें लिखा रहता है कि टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, तो बच के रहो इससे, ये चीज़ों से बच के रहो। और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मेरे पास एक मरीज आए थे जिनको ना ब्लीडिंग पीवी था पोस्ट सर्जरी, 6 साल बाद हुआ उसको ब्रेस्ट कैंसर के। मैं बोला आप कुछ तो करें, वो डॉक्टर थे तो बोले मैंने नहीं बोले कुछ नहीं करी सुशील, बोला मैडम कुछ तो कर रहे हैं, बोला बताओ, बोला क्या ले रहे। तो एक वो इम्यूनिटी बूस्टर कुछ तो ले रहे थे। व्हेन आई वेंट विद द लिटरेचर उसमें समझ में आया कि उसमें नीम का एक्सट्रैक्ट था
1: जी,
0: पढ़ने में आया कि नीम एक्सट्रैक्ट हैज गॉस इंग

0: इंक्रीज इस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी, उसके कारण वो ब्लीडिंग होता है।
1: जी.
0: तो हमको ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल चीज़ों पे ध्यान दीजिए और बी सिंपल। मैलिग्नेंसी में ना जितना आप कॉमन सेंस रखोगे उतना अच्छा, अच्छा खाना खाइए, घर का खाइए, फ्रेश खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, नींद अच्छी चली लीजिए और आपके दिमाग को एक्सरसाइज दीजिए, दैट इज़ प्राणायाम। आपके बॉडी को एक्सरसाइज दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेटिव योगा है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट निगलेक्टेड चीज कैंसर में मैं देखता हूँ कि ना फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में मसल स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है। तो इसलिए देखे गए ना कि पेशेंट पूरे क्योर हो जाते पर वो हील ही नहीं होते, हील नहीं होते वो।
1: अच्छा,
0: वो मेंटली हील नहीं होते, वो फिजिकली हील नहीं होते, मसल पूरे लूज हो जाते, चल नहीं पाते, थकान जल जाती। तो हमारा उद्देश्य क्या है, पेशेंट ठीक नहीं होना चाहिए, पेशेंट क्योर होना चाहिए और साथ साथ में हील भी होना चाहिए, हील होना चाहिए ना। अदरवाइज हम क्या करे, उसको किताब पे पेपर पे उसको क्योर कर दे रहे पर एक सोसाइटी में जाने लायक नहीं बना पा रहे, जो कि बहुत ही उसके लिए एक निगेटिविटी है। जब तक पेशेंट को बीमारी का ट्रीटमेंट चलता है ना वो चीज पे ध्यान नहीं देता, पर दो साल बाद आता ना बार बार एक ही प्रश्न था, डॉक्टर साहब मिला मला थोड़ा सा चालत मैं थकून जाते, मला स्वस्थ वाटत नहीं, मला लुस्त लुस्त वाटते, मला कमजोरी येते, मी खाली बसली की उठता येत नहीं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कि जब हमने उनको बार बार हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, मेडिटेशन, योगा। मेडिटेशन हैज गॉट अ ट्रेमेंडस रोल इन ट्रीटमेंट, ये बहुत बड़ा रोल है इसमें
1: और
0: ये
1: प्रूवन है। मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा हो तो
0: ये प्रूवन है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी एस्को 2012 में एक गाइडलाइंस में आ गया, 2006-07 की गाइडलाइंस में योगा आ गया था। तो हम जब तक नहीं मानते जब तक कि कोई गोरा हमको समझाता नहीं, पर हमारे पास तो हजारों सालों से ये है विद्या है, तो व्हाई वी शुड नॉट टेक दैट एडवांटेज, वी आर द गुरुज फॉर दिस। तो हम जब तक ये सब चीज को होलिस्टिक अप्रोच इन कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दवाइयां डॉक्टर ये यूजलेस है जब तक कि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी नहीं है,
1: स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर बहुत ही व्यापक ये विषय हैं और बहुत से कॉल्स भी हैं, लेकिन हमें अभी रुकना चाहिए क्योंकि हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। तो आप आए और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज हमारे श्रोताओं को मिला है। आकाशवाणी की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कैन केयर फाउंडेशन एंड मांधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदास पेट नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय था कर्क रोग और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया तज्ञ डॉक्टर सुशील मांधनिया ने। और इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहायक थे सुभाष शास्त्रकार और मनोज महाजन तथा निर्मिति सहायक थे अतुल साखरकर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरजपुरे। कार्यक्रम के प्रायोजक कैन केयर फाउंडेशन एंड मांधनिया कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर सुशील मांधनिया के साथ आपसे इजाजत चाहती हूं। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: श्रोत्या हूँ हेलो डॉक्टर हा लाइव फोन इन कार्यक्रम आताच अपन आकाशवाणी आणि विविध भारती या दोन्ही केंद्रांवरून ऐकलात।

0: नगर में ही मेरी।
1: एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम मिश्र संगीत।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: नागपूर महानगर पालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाइन भरा आणि मिळवा 15% सूट। तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा।
3: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, मिश्र संगीत इस कार्यक्रम में लीजिए सुनते हैं। संत कबीर की ये रचना है और पंडित भीमसेन जोशी की आवाज और संगीतकार हैं श्रीनिवास खले।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज में इरशाद कामिल ने लिखा ये गीत अभी आपने सुना और संगीतकार थे प्रीतम। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ मिश्र संगीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारतीचं हे नागपूर केंद्र आहे। श्रोते हो, सकाळचे 10:58 झाली आहेत। ऐकूया ठळक मराठी बातम्या।
1: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला ठळक बातम्या देत आहे। रेल्वे फाटक मुक्त महाराष्ट्र।

संत धनेश्वर इनकी रचना आपने सुनी, मुकेश श्यामा हिमाड़ी की आवाज़ थी और भरत व्यास ने दिया हुआ संगीत।

शिवाय इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे हैं, मोहित चौहान और मेघा श्रीराम डाल्टन की आवाजें हैं। संदीप श्रीवास्तव ने लिखा ये गीत और संगीत है मिथुन का।

सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और साथीदारों की आवाजें थी। पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा ये गीत और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत पैरीलाल।

0: बाबा, कॉलेजची फी जास्त आहे.
1: बेटा,
2: आठवतंय बोनसचे काही पैसे आपण दुसऱ्या खात्यामध्ये ठेवले होते.
1: 2 वर्षांपासून खात्यामध्ये काही व्यवहार झालेला नाही, कदाचित इनऑपरेटिव्ह झालं असेल.
3: मग आता बँकेमध्ये जाऊन किंवा व्हिडिओ केवायसी ने केवायसी अपडेट करा. खातं होईल ऍक्टिव्ह एकदम फ्री. चल,
0: कुठे
3: ऍडमिशन घ्यायला? खातं झालं ऍक्टिव्ह.
4: RBI सांगते,
5: जाणकार बना, सतर्क रहा.
6: डॉक्टर ने एडवांस मांगा और टाइम बिल्कुल नहीं था, तब गोल्ड काम आया. बेचा नहीं, बस यूज किया. थैंक यू लाइन लेंडर.
7: लाइन लेंडर एक RBI मान्यता प्राप्त NBFC है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं. फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प. गोल्ड लोन मतलब लाइन लेंडर. For contact, call 709-03-07-307. Visit us, Lakatganj, Nagpur.
8: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो.
9: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ. एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी. पेमेंट लिंक भी भेजा है.
8: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है. धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं.
9: सच?
8: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो. सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें.
9: समझ गया.

मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है गीत, अभी आपने सुना। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और फिल्म थी गोपी। श्रोताओं, इसी गीत के साथ अगला गीत हम सुनते हैं, संत तुलसीदास इस फिल्म से, पंडित भीमसेन जोशी ने गाया ये गीत है और भागवत मिश्रा ने लिखा ये गीत, संगीत राम कदम का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: दुकान में नया स्टॉक आना था पर पैसा अटका हुआ था, लेकिन मैं टेंशन फ्री था क्योंकि मेरे पास गोल्ड था और लायन लेंडर का सपोर्ट भी। लायन लेंडर ने मेरा बिजनेस बचा लिया।
4: लायन लेंडर एक RBI मान्यता प्राप्त NBFC है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं। फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प। गोल्ड लोन मतलब लायन लेंडर। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल 709-0307-307। विजिट अस लकतगंज नागपुर।
5: नागपूर महानगरपालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाइन भरा आणि मिळवा 15% सूट। तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाइन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाइन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा।
6: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित।
7: श्रोताओं, मधुमालती इस कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं, गंगा तेरा पानी अमृत। इस फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज है। साहिर लुधियानवी ने लिखा गीत और संगीतकार हैं रवि।

जय माता चिंतापूर्णी। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, नरेंद्र चंचल और साथीदारों की आवाजें थी। बलबीर निर्दोष ने लिखा ये गीत और संगीतकार थे सुरिंदर कोहली। श्रोताओं, मधुमालती ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

साबरमती इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर की आवाजें थी। कार्तिक कुश ने लिखा ये गीत और संगीतकार थे कार्तिक कुश। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनते हैं जय संतोषी माँ। इस फिल्म से ये गीत उषा मंगेशकर की आवाज है, प्रदीप ने लिखा ये गीत और संगीतकार हैं सी अर्जुन।

0: व्याकुल व्याकुल राधे का मन है, राधे के मन में वो मोहन है, जिस मोहन का श्यामल तन है, मदिरा सागर नयन नयन है, गिरधारी बन कुंज पे रैया, किसन कन्हैया बंसी बजैया, गोकुल के वो है मुरलीधर, राधा झूमे जिनकी लय पर, कहती घूमे गिरधर गिरधर, राधा के गिरधर आए,
1: देखो राधा
0: आए, हाँ गिरधर आए।

विश्वरूप। इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना, कमल हसन, शंकर महादेव और साथियों की आवाज थी। जावेद अख्तर ने लिखा यह गीत और संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। और श्रोताओं, इस गीत के साथ मधुमालती ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे।

वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है, जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत। मन्नाडी की आवाज में शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

और आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, हम जानते हैं आपको इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें, शामिल हो सकें इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों के जरिए अपने दिल की बातें साझा कर सकें। तो आइए आज की इबारत की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम एक इबारत पढ़ते हैं और उस इबारत को लेकर उस इबारत में से आपको कुछ शब्द चुनने होते हैं। तो चलिए, जो साथी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं वो तो ठीक ही है, वहाँ पर कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन यदि कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए एक बार हम ये आज की इबारत पढ़ देते हैं और आपको इस इबारत में से शब्दों को चुनना है और बताना है कि आज कौन से गीत और किन शब्दों के गीत हो सकते हैं। आज की इबारत है, जीवन की ज्योति तब तक उजली रहती है जब तक संवेदनाओं की पुकार सुनाई दे। चंदन की तरह शीतल रहकर किसी के साथ की कीमत को समझना ही सागर जैसी गहरी सोच की निशानी है। झूठ क्षण भर का सहारा दे सकता है, लेकिन मन को सच्ची शांति नहीं देता। दिल हमेशा ही गैरों में अपनापन ढूंढता है। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादों में जीवित रह जाती हैं, और फिर रूह की वो जलन, काया की हर तपन इंसान को पहले से और अधिक मजबूत बना जाती है। तो इस इबारत को आपने सुन ही लिया है, आपको बताना है कि आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक हमारे साथी ने लिखी हुई बात बताते हैं। एक साथी ने लिखा है, पूरी इबारत को एक भाव में देखा जाए तो इसका संदेश है कि जीवन में सच्चाई, संवेदनशीलता, रिश्तों की अहमियत और संघर्षों से मिली मजबूती ही इंसान को परिपक्व बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही चीजें हैं जो इंसान को और निखरने में और परिपक्व बनने में और मजबूत बनने में सहायक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के का संगीत।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूँ तो सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफ़र जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियाँ पढ़कर, और लगता है कि हाँ, हमारी बात सुनने वाला भी उतने ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं, हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए, आपको सुनवाते हैं ये अगला।

हाँ तो भाई किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हो, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं।

नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें, बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है, और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है, संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है, यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं, यही सच्चाई है। ये भी एक साथी ने लिखा है और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

0: पागल।
1: तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ये लिखते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारे आम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो। इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है, तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो। साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था, उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

वेदनाएं शब्दों में नहीं, हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं येसुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां हम दिल खोल कर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में बातें दुनिया की। कहने को तो मात्र तीन अक्षरों का शब्द है दुनिया। छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है, और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है, कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने में लगा देता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस रंगमंच पर केवल एक मुसाफिर है। अपने बड़ों से हमने ये सुना भी है ना कि दुनिया एक सराय है जहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।

0: तो क्या है।
1: दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

कभी छोटे कभी खड़े कभी छोटे कभी दुबले कभी मोटे कभी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: बाहर है हप हप, आता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आज की दुनिया बिखरी सी है, सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है। यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: क्या हुआ।
1: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
4: जी।
3: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया।

0: गया था।
1: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित तीन प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने दो वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे कुल नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ठ की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
4: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके।

0: बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझे गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी

0: पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद अजीज की, आनंद बख्शी की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है। समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता,
1: हमारे श्रोता
0: जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए
1: जी।
0: तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी के भी थे,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन ले हम,
1: चलिए।

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो, उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं।
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
1: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी, यहाँ कौन ईमानदार है,

0: वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुव्वत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी। शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जो ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
1: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
2: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
1: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
0: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
2: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
0: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
2: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
0: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
2: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
0: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
1: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
0: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
1: गुरु सेवक हंसकर बोला,
3: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
0: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
3: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
0: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
2: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
1: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
0: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
1: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोले।

0: ला।
1: दीदी, मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
2: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
1: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या।
2: सही कह रहा,
1: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूँ। और आंखें किसकी बचाऊं, सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हाँ, उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
2: अच्छा,
1: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 ही महीने में 250 कर दिया।
2: अच्छा,
1: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
2: अच्छा, एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है।
1: वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
2: अच्छा।
0: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए।
2: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी। हाँ, लेकिन अब इस घर से मुतलक दिलचस्पी न रही।
0: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन। लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
2: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे। मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते, या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे।
0: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
2: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी। हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा। और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं।
0: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
3: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
2: तो लाकर क्यों नहीं दिया, मैं उसे निकाल देती तो कहते। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा, महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योंत करनी पड़ती है।

0: क्या पहनूं क्या ओढूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी, तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं, तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से।
1: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश्त में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
1: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मादूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई, एक दूसरे के ऐब और हुनर मालूम हो गए। अब तो साबिर और शाकिर रहकर ही उनकी जिंदगी आफियत से कट सकती है। रूप कुमारी इतनी मोटी सी बात भी नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से हमदर्दी हुई, उसकी सख्त कलामियों का उन्होंने कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन का ठाट देखकर एक लम्हा के लिए रूप कुमारी के दिल में ऐसे दिलशिकन, मायूसकून, गैर मुनसिफाना ख्यालात पैदा होना बिल्कुल फितरी है। वो कोई फिलोसोफर नहीं, तारिक को दुनिया नहीं कि हर हाल में अपने तबई सुकून को कायम रखे। इस तरह अपने दिल को समझाकर उमानाथ दरियाफ्त हाल की मुहिम के लिए आमादा हो गए।
3: मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें की दूसरी कड़ी आपने सुनी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी ममता सिंह, उमानाथ अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
4: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हैं हम एक गीत।
5: सुनते हैं ये गाना।

0: मुझे तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है, क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, तो अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना?
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से,
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं, फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी, उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था, हमने आराम से बातचीत की और बात भी

0: अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रही, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र चू, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी, हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सोख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है, उस जल के पैकेट का उपयोग करें या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो
0: पोंछ देती है
1: सारे अलमारी जितने टेबल हैं, कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा। और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खासतौर पर बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में
1: और तो... जब बहुत शौकीन होते कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती हैं, मदद करती हैं जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती
1: और
0: है।
1: बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डी ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते

0: और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खास तौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
1: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
0: खाना खाते हैं।
1: तो आज किस खाने की बातें करने वाली
0: आज
1: थी?
0: हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
1: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए जैसी की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है।
0: जी, ये अलग
1: और
0: तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च, या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसे ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है।
0: जी,
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर ले, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है,
0: जी,
1: पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेहतनामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती

0: में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
0: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
0: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
0: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
0: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं
1: जी।
0: सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है, और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसी प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है
1: बिल्कुल।
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है
1: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी।
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स।

0: हाँ, यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी,
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी, तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी,
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आते हैं कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी,
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ये ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है, सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है। बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं
1: जी जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है, खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी, और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है,
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद

0: करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरदहस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करे वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
0: जी,
1: या
0: जी.
1: तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि
0: जी.
1: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी।

0: रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है. तो सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस. आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है. प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाइव रिडक्टेस इनहिबिटर. ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है.
1: जी.
0: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है.
1: जी.
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं.
1: जी हाँ.
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की. यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए. अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा.
1: जी जी.
0: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए.
1: जी.
0: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था.
1: जी.
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है. आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है. ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके, ये कोशिश रहती है.
1: जी.
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है. सो ये नई नई चीजें आई हैं. हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं.
1: जी, जी.
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़असर भी रहते हैं.
1: जी, जी.
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है.
1: जी.
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी उसका प्रचार हो रहा है.
1: जी, जी.
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो ज्यादा अच्छा होता है. तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में.
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट इज क्वाइट ऑल राइट. जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है.
1: जी,
0: लेकिन
1: जी.
0: पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
1: जी जी. डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े. तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
1: वाह, क्या बात है. किशोर कुमार की
0: किशोर
1: आवाज.
0: कुमार की आवाज, क्या गाना है.
1: जी, सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती हैं, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है. सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है. सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है. लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से, आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपकी शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं. सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है. लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है.
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
1: जरूर
0: है. तो
1: जरूर.
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है. स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर. कुछ

0: ये जेनेटिक्स है, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है. सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा. सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं.
1: जी जी. यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
0: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए.
1: जी जी.
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की. सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है. लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है. जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है.
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा.
0: एब्सोल्युटली नहीं. और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है.
1: जी.
0: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है.
1: जी. और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं.
1: जी हाँ.
0: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं. सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है. और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है.
1: जी जी.
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है.
1: जी. तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है.
1: जी.
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है. अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा. और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है. फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या हो जाती है. सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है. सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है.
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए. कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो.
1: ब्लैक पेंसिल काफी का गाना.
0: जी, रोमांटिक गाना है.
1: जी,
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छे तरह से गाना गाया है.
1: जी जी. डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे.
0: तो हाँ जी.
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है. लेकिन एक जमाना था गाते थे.
1: जी.
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है.
1: जी जी.
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम کبھی کبھی آپریشنس میں، کبھی کبھی کڈنی ٹرانسپلانٹ میں، ہم 24 گھنٹے

0: ये 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं।
1: जी
0: सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
1: जी जी
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते, कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी, जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए।

0: सच बात है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
1: जी,
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
1: जी।
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: There are young ladies जो after sexual activity also उनको infection होने की tendency रहती है
1: जी।
0: So I think gynecologists को मिलके या urologist को मिलके किस lifestyle changes पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
1: जी।
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है
1: जी।
0: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
1: जी। जी,
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है। तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है
1: जी,
0: बहुत अच्छा गाना है
1: जी।
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा
1: जी। सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए।

0: और उससे आपसे ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
1: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
0: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है
1: जी।
0: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
1: जी।
0: हर पेशेंट whether is men or a woman, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
1: जी।
0: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
1: जी।
0: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
1: जी। बिल्कुल,
0: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
1: बिल्कुल,
0: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
1: जी। बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
0: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
1: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
0: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
1: ओके,
0: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं,
1: okay,
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है। ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए। सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है
1: जी। दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते।

कुछ कहना नहीं होता है, ना ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाते हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

0: की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: माझी

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

0: सुरेश वाडकर यांच्या स्वरात रेखा गंधेवार यांची शब्दरचना आताच आपण ऐकलीत. या गीताला संगीतबद्ध केलं होतं अशोक पत्के यांनी.
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है. तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं.
2: जल है तो हम है. आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं. रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं. अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें. जलाशयों से गाद निकालें. अधिक से अधिक पेड़ लगाएं. इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से.
3: दुकान में नया स्टॉक आना था पर पैसा अटका हुआ था, लेकिन मैं टेंशन फ्री था क्योंकि मेरे पास गोल्ड था और लायन लैंडर का सपोर्ट.

0: भी लायन लेंडर ने मेरा बिजनेस बचा लिया।
1: लाइन लेंडर एक RBI मान्यता प्राप्त NBFC है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं। फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प। गोल्ड लोन मतलब लाइन लेंडर। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल 709-0307-307। विजिट अस लकतगंज नागपुर।
2: श्रोते हो, जीवनात दुःख येतं अचानक न बोलवता। कधी ते अश्रूंमध्ये ओघळतं, कधी मनात खोलवर घर करून बसतं। असं वाटतं हे दुःख कधीच जाणार नाही, ही वेदना कायमची सोबत करणार आहे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। पहला गीत कार्यक्रम का आप सुनेंगे सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं अलामा इकबाल और गुलजार। संगीत है शंकर एहसान लोय का। फिल्म का नाम है राजी।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की था।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

मेरा साया। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार हैं मदन मोहन।

मेला इस फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देव बर्मन का, और फिल्म का नाम हमने आपको बताया मेला।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। नगमा निगार हैं अख्तर रोमानी और फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत है मन्ना डे की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

लीजिए सुनिए अगला गीत मुकेश और हेमलता की आवाजों में। गुलशन बावरा के लिखे गीत को सुरों में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है विश्वास।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आशा भोसले की आवाज में, गीतकार हैं गुलजार, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है इजाजत।

ये विविध भारती है। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है प्रदीप कुमार और नरगिस अभिनीत अदालत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं मदन मोहन। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में. गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं मदन मोहन. फिल्म का नाम है अदालत.

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

अगला गीत है एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं मदन मोहन और फिल्म का नाम है अदालत।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज आपने सुने फिल्म अदालत के कुछ गीत राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं विजय सूरी की लिखी नाटिका जवाब दो मुझे।
1: ओ, कौन भाई? अरे कौन है?
2: गेट खोलो मुरलीधर।
1: हेडमास्टर साहब, ये आप हैं?

0: हाँ मुरली, गेट खोलो।
1: इतनी रात को आप कैसे चले आए सर?
0: बस चला ही आया मुरली, मेरा कमरा खोल दो।
1: जी अच्छा, आप दफ्तर की तरफ चलो, हम गेट बंद करके आते हैं।
0: ठीक है।
1: ये आज रात के 2 बजे कैसे आ गए? हाँ हाँ, पिछले 15 दिन से टीचिंग स्टाफ हड़ताल पर है और इन 15 दिनों में हेडमास्टर साहब की सेहत इस कदर गिर गई है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। ओहो, कहाँ गई चाबी? हाँ हाँ, ये रही। अरे ये हेडमास्टर साहब कहाँ चले गए? हेलो, वो तो क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। चलो आ जाएंगे कभी, पहले दफ्तर तो खोल दूं। ये लो, सिर्फ एक ही बल्ब काम कर रहा है, ट्यूब शायद खराब हो गई है। कोई बात नहीं, अगर जरूरत हुई तो हेडमास्टर साहब टेबल लैंप रोशन कर ले हैं। अगर हुक्म होए सर तो अपनी कोठरी से चाय का कप बना कर ले आऊं आपके लिए।
0: नहीं बदली, जाओ अब तुम आराम करो।
1: अच्छा सर, और कौनो चीज की जरूरत हो सर तो?
0: नहीं बस तुम जाओ।
1: जी अच्छा।
0: सुनो मुरली।
1: हाँ सर।
0: ऐसा करो मुरली, सारे क्लासरूम खोल दो।
1: सारे क्लासरूम खोल सर ये बखत?
0: हाँ।
1: क्या क्या हड़ताल खत्म हो गई सर? टीचर लोग काम पर वापस आ रहे हैं क्या?
0: सवाल नहीं मुरली, जो मैं कह रहा हूं वो करो।
1: जी जी अच्छा सर।
2: ये क्या पागलपन कर रहे हो विद्या प्रकाश?
0: पागलपन? कैसा पागलपन?
2: पागलपन नहीं तो और क्या है? रात के 2 बजे स्कूल में आना, क्लासरूम खुलवा देना, आखिर क्या है तुम्हारे मन में?
0: तुम तो जानते हो मेरे मन की बात। क्यों तुम हंस क्यों रहे हो? पर नहीं, तुम्हारी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। आंसुओं को पीकर तुम हंसने की कोशिश कर रहे हो।
2: तुमने मुझे और अपने आप को इतना गड्ढबंड कर दिया है कि मैं चाहते हुए भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन एक बात कहूं विद्या प्रकाश?
0: बोलो।
2: तुम्हारे जैसे लोगों का आज के जमाने में कोई स्थान नहीं है। सच्चाई, उसूल, त्याग, ये सब शब्द आज के दौर में बेमानी हो चुके हैं। अगर आज के समाज में जीना चाहते हो विद्या प्रकाश, तो दूसरों के साथ कदम मिलाकर चलो।
0: तुम भी अजीब हो दोस्त, कभी तुम मुझमें मिलकर मेरे जैसे हो जाते हो और कभी हल्की सी चोट से घबरा जाते हो। सच्चाई आज भी जिंदा है, उसूलों की आज भी कद्र की जाती है, त्याग को आज भी महानता हासिल है।
2: कितने लोग मानते हैं इन बातों? किसी ने कान धरा था तुम्हारी बातों पर? तुम्हारा हर शब्द, हर दलील बेअसर साबित हुई थी।
0: आग एकदम नहीं भड़कती दोस्त, चिंगारी से शोला और शोले से ज्वाला बनती है। मैं ये नहीं मान सकता कि सच की चिंगारी किसी के भी मन में न सुलग रही हो।
2: 20 आदमियों का टीचिंग स्टाफ है तुम्हारा, क्या किसी एक मन में भी वैसी चिंगारी को फूटते, जन्म लेते महसूस किया है तुमने?
0: हाँ, शायद एक था।
2: कौन?
0: तुम्हें ध्यान नहीं है लेकिन मैं जानता हूं उस रोज जब वो सब हड़ताल का फैसला करके मेरे दफ्तर में आए थे, वो अपनी बात कह रहे थे और मैं
3: मैनेजमेंट को फायदा है
4: हमारी बात को सुनता ही नहीं।
5: हड़ताल ये एक रास्ता है।
4: अरे आप भी आपके साथ हड़ताल
5: करेंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे।
6: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए

0: सुनिए
1: सुनिए सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आप सबसे उम्र में बड़ा हूं और स्कूल का हेडमास्टर हूं। मेरी आपसे विनती है कि पहले आप ठंडे दिल से मेरी बात सुन लें।
2: बोलिए बोलिए ना सर, हम तो सब आपके दिल से इज्जत करते हैं सर।
1: दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपकी मांगे जायज नहीं। आप जो भी मैनेजमेंट से मांग रहे हैं वो आपका हक है और आपको मिलना ही चाहिए। लेकिन लेकिन दोस्तों, अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो रास्ता आप चुन रहे हैं वो गलत है।
2: गलत क्यों है सर? आज तो ये रिवाज सा बन गया है कि जब तक हड़ताल न करो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और न ही आपकी मांगों को माना जाएगा।
3: मैनेजमेंट हमें मजबूर कर रहा है कि हम हड़ताल करें।
2: बिल्कुल।
1: दोस्तों, आप सब सिर्फ पढ़े लिखे ही नहीं बल्कि विद्या का प्रकाश फैलाने वाले हैं। आने वाली नस्लों को बिगाड़ना या बनाना आपके हाथ में है। जिन किताबों को पढ़कर आप इस काबिल हुए हैं, उन किताबों और उनके ज्ञान को अमर बनाना या फिर उन्हें कफन ओढ़ाकर दफन कर देना आपके हाथ में है।
2: आपकी बात कुछ साफ नहीं है सर।
1: बात बिल्कुल साफ है मिस्टर शर्मा। वो बच्चे जिन्हें आप पढ़ाते हैं, अच्छे बुरे की तमीज सिखाते हैं, अनुशासन का उपदेश देते हैं, वो बच्चे
2: मगर हमारी मांगों और स्ट्राइक पर जाने के फैसले का बच्चों के भविष्य से क्या ताल्लुक है सर?
1: बहुत बड़ा ताल्लुक है शर्मा जी, बहुत बड़ा ताल्लुक है। आज ये बच्चे देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके टीचर किसी बात को मनवाने के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, अपना काम बंद कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो कल वो भी हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे।
2: आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं सर।
1: मिस्टर गुप्ता, कल जब आपका कोई स्टूडेंट किसी बस को जलाएगा, किसी रेल का पहिया जाम करेगा, तो वो उस किताब को जलाएगा जो आपने उसे पढ़ाई है, उस ज्ञान को बढ़ने से रोकेगा जो मानव कल्याण और उन्नति के लिए आपने उसे दिया है।
3: हमारे स्टूडेंट कल क्या करते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं।
2: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल हैं।
3: वो किस तरह?
1: रेल, हवाई जहाज बनाने का ज्ञान आपने दिया, इंसान को मौत के मुंह से वापस ले जाने वाली दवाइयां बनाने का ज्ञान देने वाले भी आप हैं, सर्वनाश करने वाली नदियों पर बांध बांधने की शिक्षा आपने ही दी है, और अब आप ही हड़ताल, बंद और तोड़ फोड़ करने की गलत राहें दिखा रहे हैं।
2: ये सब ठीक है सर, लेकिन इन बातों से पेट नहीं भरता सर।
1: स्वार्थ, केवल अपना स्वार्थ और कुछ नहीं।
3: अजी, कौन नहीं सोचता अपने स्वार्थ के लिए?
1: सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन जैसे हजारों लोग ये जानते हुए भी फांसी पर चढ़ गए कि आजादी का सूरज देखना उन्हें नसीब नहीं होगा, मगर उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी, और हम लोग क्या दे रहे हैं आने वाली नस्लों को?
2: भाई, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए सर।
1: मैनेजमेंट क्या सोचती है ये दूसरा सवाल है, पहले आप बताइए आप क्या सोचते हैं। आप हड़ताल करेंगे, मैनेजमेंट का नुकसान होगा। चलो मान लो महीना 15 दिन की हड़ताल के बाद आपकी मांगों को मान भी लिया जाता है, मगर इस दौरान मासूम बच्चों की तालीम जो अधूरी रह जाएगी उसका क्या होगा?
2: आप पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं सर। आज कौन हड़ताल नहीं करता? पुलिस से लेकर डॉक्टर तक, मिल वर्कर से लेकर इंजीनियर तक, सियासी पार्टियों से लेकर धार्मिक संस्थाओं तक, सभी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। फिर आप हमें क्यों रोक रहे हैं?
3: ये हड़ताल होकर रहेगा।
2: हाँ,
3: दोस्तों,
2: जरूर जरूर होकर रहेगी, हड़ताल होकर रहेगी।
3: कल से क्लासें बंद
2: बंद
3: चलो
2: बिल्कुल बिल्कुल बंद
3: चलो
2: चलो
3: चलो आओ भाइयों
2: चलो
3: आओ क्लासें बंद बिल्कुल आओ भाइयों
1: आप क्यों नहीं गए मिस्टर शर्मा?
2: सर, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ,
1: लेकिन क्या मिस्टर शर्मा?
2: अगर मैं अपने साथियों का साथ न दूं सर तो गद्दार कहलाऊंगा, मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा सर। आई एम सॉरी सर, मैं चाहते हुए भी उनका साथ नहीं छोड़ सकता सर। नमस्ते।
4: तुम बड़े भोले हो विद्या प्रकाश, शर्मा दोहरी चाल चल गया।
1: दोहरी चाल?
4: हाँ, तुम्हारे विचारों से सहमति की बात करके तुम्हें खुश भी कर गया और हड़ताल में शामिल होकर अपने साथियों का वफादार भी बना रहा। तुम अकेले हो विद्या प्रकाश, बिल्कुल अकेले, कोई तुम्हारे साथ नहीं है।
0: ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अकेला हूं?
4: आदमी दुनिया को तो धोखा दे सकता है विद्या प्रकाश, लेकिन अपने आप को नहीं।
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
4: किसी ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया विद्या प्रकाश, यहां तक के प्रभा भी।
0: प्रभा?
4: हाँ, प्रभा तुम्हारी पत्नी। क्या कहा था उसने?
5: मैं कहती हूँ जब तुम्हारे स्कूल के मैनेजमेंट को ही कोई परवाह नहीं तो तुम्हें किस बात की चिंता है?
0: चिंता है प्रभा, मेरे स्कूल के वो मासूम बच्चे।
5: तुमने अपने स्कूल के बच्चों के अलावा कभी और कुछ सोचा है? तुम्हारे साथी ट्यूशन कर करके कारों फ्लैटों के मालिक बन गए, मगर तुम?
0: विद्या बेचने की नहीं प्रभा, दान करने की चीज है। आज तुम ये बहस क्यों लेकर बैठी हो प्रभा?
5: इसलिए कि तुम दूसरों के गम में अपनी जान हलकान कर रहे हो, कल को तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: दूसरा कौन है प्रभा? वो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे जो विद्या प्राप्ति के लिए वहां आते हैं प्रभा, वो तो भगवान का रूप होते हैं।
5: तो करते रहो उन भगवानों की पूजा, अकेले ही पढ़ा लो उन सबको तुम।
0: कोई मेरे मन की बात नहीं समझता, तुम भी नहीं प्रभा, तुम भी नहीं।
4: सच कह रहे हो विद्या प्रकाश, कोई भी तुम्हारे मन की बात नहीं समझता, इसीलिए तो मैंने कहा ना, तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले।
0: मैं ही गलत हूं? बोलो, जवाब दो। अब चुप क्यों हो गए हो? बताओ, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो कुदरत के बनाए हुए उसूल गलत है। कभी सूरज को हड़ताल पर जाते देखा है तुमने? कभी हवा ने बंद का आह्वान किया है? कभी धरती ने अपनी गर्दिश को टोका है? रुक जाने का नाम जीवन नहीं, मौत है, मौत। बोलो, आज का इंसान मौत का पुजारी क्यों बन रहा है? मशीनों की मौत, जान की मौत, किताबों की मौत, मानवता की मौत। बोलो बोलो, जवाब दो, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कहां चले गए हो तुम? बोलो ना, जवाब दो, मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे। गलत कौन है? खामोश क्यों हो तुम?
6: हेडमास्टर साहब,
4: किताबों को कफन उड़ा दिया जाए, मशीनों को आग लगा दी जाए। बोलो
6: हेडमास्टर साहब,
4: बोलो जवाब दो।
6: ये आप किससे बात कर रहे हैं?
4: क्यों नहीं हो तुम? क्या रुक जाने का नाम जीवन है? बोलो।
6: अरे पर मेरा मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर, मेरा गिरेबान तो छोड़िए सर।
4: पहले मुझे जवाब दो, जवाब दो मुझे, मुझे जवाब चाहिए। कुदरत गलत है, कुदरत गलत है।
6: मास्टर साहब, अरे ये तो बेहोश हो गए। पानी, हाँ पानी लाता हूँ, पानी लाता हूँ।
0: जवाब तो मुझे, मुझे जवाब दो।
7: तो ये थी नाटिका हवा महल में आज, जवाब दो मुझे। इसे लिखा विजय सूरी ने, निर्देशन किया अचला नागर ने। विविध भारती की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।
8: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
9: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी

0: के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नागपूर महानगर पालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाइन भरा आणि मिळवा 15% सूट, तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ इंधन आणि त्रास वाचवा।
2: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित।
3: कॅच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा की आवाजों में। गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत है विशाल शेखर का और फिल्म का नाम है मुसाफिर।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम का अगला गीत हम लाए हैं लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में। नगमा निगार हैं जावेद अख्तर, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर ज़ारा।

लीजिए सुनिए अगला गीत उदित नारायण नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत को लिखा है नितिन राय कवार ने, संगीत है अनु मलिक का और फिल्म का नाम है जोश।

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं कौसर मुनीर, संगीत है सुहिल सेन का, फिल्म का नाम है एक

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत

और अमरीका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का

0: शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को चार लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड थ्री लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी हमलों की निंदा करते हुए अमरीका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सी रामचंद्र, फिल्म का नाम है अनारकली।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है ताजमहल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है कमर जलाल आबादी ने, धुन है हंसराज बहल की, फिल्म का नाम है चंगेज खान।

आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है प्रेम धवन ने, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है वल्ला क्या बात है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है घूंघट।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है काली घटा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है उड़न खटोला।
3: चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पर तुम्हें मिल गया ठिकाना।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: यह है विविध भारती।
6: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़े

0: अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती है। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो, क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आज की कोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूं।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आपका
0: गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
3: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
4: दुकान बंद है?
3: किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
4: अरे मैं क्यों खुश भाई?
3: हम जो बनते हो, आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर पुशर बातें करते और पूछते मुझसे हो गए खुशी किस बात की।
4: किसने कहा तुझे तब?
3: एक काले कौए ने।
4: काले कौए ने?
3: हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
4: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
3: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
4: किस चीज का?
3: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का,
4: बस,
3: का,
4: बस, बस, बस, बस, बस, अरे भैया यही तो तुम में एक कमजोरी है।
3: क्या?
4: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
3: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी। एक बार मुझे उससे मिला दो
4: ताकि तू तो अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
3: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कोश नहीं बोलूंगा।

0: जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोले।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दलसुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दलसुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में

0: नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
1: कैदी नंबर 602
2: हाजिर है।
1: सर झुकाकर बात करो।
2: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
1: बहुत खूब। मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
2: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
1: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए।
0: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुईं, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

वाला हम सफर हम राज हों ता कयामत

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
2: तरीका छोड़ो साहेब, बात गलत था। एनीवे हैव अ ड्रिंक, कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
2: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू बिकती, लेट गो। कोई मतलब का बात है, बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
2: हमको कितना पैसा चाहिए, क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं?
1: बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बर्गेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
2: पैसा का किताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ, अभी बताता है तुमको, यू वेट। पैसा मनी मनी मनी, तुम क्या समझता पैसा तुम्हारे पास? पैसा हमारे पास नहीं, देखो। लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। और हम छोटा लोग के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम?
3: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
1: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
0: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है, पर तू कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से
4: कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ,
4: जब गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
4: यही कि खरगोश अब भी संभल जा वरना फंस जाएगा। 2 दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
0: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है,

0: अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: राज की बात कह दूं तो जान में।
2: एक तरफ होते दिलीप कुमार देव आनंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
3: का झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम खाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतबल एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
4: आया सेठ रतिराम।
3: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
4: तलाक का है काम, बीवी पर बचलने का इल्जाम।
5: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
3: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं।
5: गुल, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
3: सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
4: एक नंबर का यहाँ सेठ।
3: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
6: गोलू भैया।
3: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
6: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
3: ओ भैया हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
6: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
3: ओ, यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
2: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले

अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की गली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए हाँ कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: यार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: गुजरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
0: ओ सवरिया।
2: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च

उच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: छाया गीत के सुनने वालों को जयंत का नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

चाहते हैं बसना धड़कते दिल के हर राग में, चाहते हैं छुपना सांसों की झनकार में, झुक जाएंगे दिल की जानिब, तुम पुकारो तो सही।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

0: छाया गीत के बाकी गीत इस अंतराल के बाद।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों गुस्सवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

उलझन, सच बन गया अगर उलझन, फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता, मुझ पर यकीन अब कम सही, मैं सादा दिल मुजरिम सही, इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी।

मंजिल तय हुई, हम सफर भी बन गए, पता न चला ये दो दिल कब एक हुए, हमें पता न चला, मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबां पे है।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम

0: अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगे। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती का ये नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय रात के 11:05 हो चुके हैं। आइए पेश करते हैं कार्यक्रम बेला के फूल। कार्यक्रम का आगाज करते हैं अनारकली फिल्म से। आवाज है लता मंगेशकर की। हसरत जयपुरी के बोल है। सी रामचंद्र का संगीत है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आंधी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, बोलते गुलजार के राहुल देवबर्मन का संगीत था।

श्रोताओं कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं गोपी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्णन के बोल है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

श्रोताओं, अभी आपने आदमी फिल्म का गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। कार्यक्रम में अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म से। मुकेश की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल है, शंकर जयकिशन का संगीत है।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ आज का बेला के फूल ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। अब सुनिए मौसम का हाल। पिछले 24 घंटों में नागपुर का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, तथा न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम था। आने वाले 24 घंटों में नागपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। ये था मौसम का हाल।